0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Marvin, mommy's boy, track nigga. Governor
3: on the beat.
4: I'm a BDJ, DJ 4.